एडोब रीडर है, एडिट करते पीडीएफ जानते हैं कि अगर कोई नहीं आता हाथ कर दे तो ये क्या है, ये तो भी जानते हैं ये कौन नहीं जाता ये अच्छा और नया नाम है वैसे तो फेसबुक है चित्रा चुका है क्या है सब मिलके ये क्या है ईमेल है तरफ आती है ईमेल ईमेल में लोगों देखे बताते हैं क्या है बड़ी बात ये शक्ल से बोट लगे एंड्रॉइड के लिए रोबोट नहीं है चले उन्हें क्या एंड्रॉइड का एंड्रॉइड नहीं मान ये क्या है ये सब जान ये क्या है नहीं के बाद दूसरे क्यों का और से कहे और से तो बच्चे जानते हैं अगर कल सूरज की अच्छी है चल जान लिया ये इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ये क्या ये क्या ये पहले पढ़ो सही क्या ई एस पी एन इस पेन ने जैसे इस पेन पढ़ने गलत है तो मेरा जी बच्चा इसमें पढ़ ले हसीन क्या है पढ़ सकते हैं इस पेन से इसे अपने ई एस पी एन ऐसे पढ़ेंगे तो भी हम जाते हैं सीने पे आते क्या नाम है सूरत अल फलक हम इतने ही जो सूरत फलक तफसीर जाए तफसीर जाए मैं पूछूंगा फिर या कहना पे सब नहीं आते कोई नहीं है सीखने के लिए है ना मुकम तफसीर तफसीर नहीं आती अमल दर्ज होता है दो चार हाथ बना लेता होता है तर्जुमा मुकम्मल आता है अभी पूछो लफ्ज नहीं आएंगे जिसे वो पूरी सूरत तर्जुमा आता है अल्लाह सलाम चलो पूरी तर्जुमा नहीं था एक आयत होना चाहिए इसे तर्जुमा आता है कर करें नहीं अगर कुछ करें चलो आयत के हिस्से का था इसका यकीन का वक्त देख तर्जुमा जमा देहात कर एक बंदा जो एक लफ्ज तो चाहिए ना सूरत है एक है भी नहीं आया एक से का भी तर्जुमा लफ्ज का दो चाहिए तो तर्जुमा सब पता है मुझे पता है जो मैंने हर बता जो भी कुरान पढ़ता है तो तर्जुमा बरेलवी का पढ़े दिबंदे पढ़े सब पढ़ते कि नहीं सहना कितने को आता है कि मांग ले सिर्फ अल्लाह तरह मानो तुझे क्या शिर इबादत कहते हैं शिर्क अकबर है कितने लोगों का है कमन है बोले ना सुबह फासिकीन क्या छा जाए घास से छा जाना हो गया उल्टा पड़ते उतर गया वो वक्त है फासिक का पूछ रहा आज या अंधेरा रात को भी कहे अंधेरे को भी कहे थे और वक्त छा जाना समझ का क्या है चले सुर फलक इसी लंबे सुर अखलास तकरीबन हम जब जल्दी होते हैं तो अखलास पढ़ पास जल्दी खत्म लेते हैं समझ हम बार पढ़ते हैं समझ का क्या बिनियाज सब जानते हैं ये इधर सुन के वो है बिनियाज क्या है चलो बिना तो कुछ पढ़ दिया हमने बिनियाज किस कहते हैं जो ठीक है मजनी कायनात की मकतब इसका क्या मैं सब जानते हैं सब जानते हैं महबूद हक इल्लल्लाह का मान हम जानते हैं ला मअबूद हक इल्लल्लाह टेक्नोलॉजी क्या है फेक लोगों क्या है यूट्यूब का क्या हम जाने या ना जाने फर्क पड़ते मुसलमान को या किसी भी इंसान को अगर वो जाता है और उसे फेसबुक फेसबुक बन जाता है या उसे यूट्यूब बनते हैं यूट्यूब का क्या है पड़ेगा उसे अगर मर जाता है उसे नहीं मानता ला इल्लाह माना क्या है फर्क पड़ेगा नहीं हमारे बच्चे भी जानते हैं टेक्नोलॉजी है

क्यों? क्योंकि वो हय है, वो कयूम है, उसे ऊंघ भी नहीं आती, उसे नींद भी नहीं आती। मखलूक मोहताज है, कमजोर है, वो नींद की मोहताज है। रब दुर्जा सुभान व तआला खालिक है, मालिक है। लहु मा फि समावाति व मा फि अर्द من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم